0: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within us all have a place and a voice. Welcome.
1: 1, 2, 3, 1. स्वागत है एडलेड में, आपका स्वागत है। मिलते हैं जहां संस्कृतियां और आपके अनोखे कहानियों को एक आवाज। स्वागत है